हरि ओम एवरीबॉडी उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की आदि शक्ति नव दुर्गा माता की सत्य सनातन धर्म की सकल पंच की जय जय जय सीताराम। आपन आसन बैठिए। लेट अस ऑल टेक अवर सीट। वी थैंक रेडियो एज वेल एज टीवी जागृति, द टेक्निकल क्रू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, द पंडित्स, and do come back tomorrow, return back home safely, devotees. Always keep Bhagwan Krishna in your mind and you will always be successful. Vrindavan Bihari Lal Ki.

आशा भोसले एंड किशोर कुमार फॉर यू ऑन योर सुनहर सपना रेडियो जागृति 107 एफएम लेट्स सी ट्राई वंस अगेन डैंडी माल्टी अंकल राल्फी शिवी सुनल सीता शॉन मेलिसा समीर एंड वानी ऑस डे इन ऑरलैंडो Auntie Radhika, Uncle Roop, Little Co Road Komoto, Auntie Sita Lakin out there in Montrose, Gita out there in Edmonton, Alberta.

या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे मां सरस्वती अपनी कृपा का हमें वरदान दो। हे जननी हम बच्चे हैं शिशु हैं अज्ञानी हैं। मां तुम्हारी स्नेहमयी स्निग्ध दृष्टि से हमारी बुद्धि जागृत करो जिससे हमारी मेधा प्रतिभा स्मृति तुम्हारे अलौकिक तेज से चमकने लगे। 64 कलाओं की अधिष्ठात्री विद्यादात्री तुम अत्यंत दयालु हो। हे मां शारदे तुम्हें हर विद्या अभिलाषी का शतशः प्रणाम। मां सरस्वती तुम हर विद्यार्थी को कदम कदम पर सिद्धि का वरदान देती हो। अत्यंत शांत भाव से अपने उपासकों द्वारा अनेक तत्व और व्याख्याओं की चर्चा कर नए सिद्धांत विश्व में प्रस्थापित करती हो। तुम ज्ञान को बढ़ाती हो दुनिया की विचारधारा को प्रगति के पथ पर ले जाती हो। हाथ में वीणा और ग्रंथ धारण करने वाली शुभ्र कमल पर आसीन मां सरस्वती तुम कला और विज्ञान का पवित्र मेल हो। दूध और पानी को अलग करने का सामर्थ्य रखने वाला महान विवेचक श्वेत हंस तुम्हारा वाहन है। तुम्हारा वर्ण कुंदा के फूलों जैसा उज्जवल है और चेहरे पर मृदुस्मित हास्य से शोभायमान है। कोटि सूर्यों के विद्या तेज से प्रकाशमान है। ऐसी मां शारदा देवी का कृपा पात्र होने की अभिलाषा से हर साधक प्रतिदिन प्रातःकाल विद्यारंभ से पूर्व प्रार्थना करते हैं। ओम श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै नमः। ये सरस्वती मंत्र पारायण करने से वो कल्प वृक्ष जैसा सिद्ध हो जाता है ऐसा उल्लेख देवी भागवत में है। परम दयालु नारायण जब वाल्मीकि के राम राम के जाप से प्रसन्न हुए तब नारायण ने गंगा जी के किनारे वाल्मीकि को सरस्वती मंत्र की दीक्षा दी। उनके उपदेशानुसार वाल्मीकि ने सरस्वती मंत्र को सिद्ध किया और वे वाल्या से वाल्मीकि और वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि हुए। मां सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि आज हजारों वर्षों बाद भी रामायण की कथा सबसे अधिक सुनी और पढ़ी जाती है। ना मालूम ऐसे कितने विद्या रत्नों से जड़े हुए आभूषणों से मां विभूषित है। कितने सरस्वती उपासक उनकी कृपा से अमरत्व पाए हैं। प्रज्ञावर्धन स्तोत्र में शिवपुत्र कार्तिक स्वामी की स्तुति है जो स्कंद पुराण से है। इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन 11 बार करने से विद्यार्थी की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है और वो मां शारदा का कृपा पात्र हो जाता है।

जगद्गुरु आदि शंकराचार्य विरचित शारदा भुजंगाष्टकम के नित्य श्रवण और पठन से हर विद्या अभिलाषी शिशु, बालक, तरुण और प्रौढ़ को उससे लाभ होगा। उसकी ग्रहण शक्ति, स्मरण शक्ति और विवेचन शक्ति बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी।

0: your number one morning inspiration program, Radio Jagriti 102.7 FM.
1: खड़गम चक्र गदेशु चाप परिदान शूलं वुशुंडीशिर शंखं संदत सिंकरैस्त्रिनयनं सर्वांग भूषा

वापस आऊंगा राइड विद पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ, रैविशिंग शर्वरी, अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस अब बंटी और बबली टू फेम, आइकॉनिक हॉटथ्रब वेदांग रैना एंड वर्सेटाइल वेटरन नसीरुद्दीन शाह विद अ रेपर्टोर ऑफ सोलफुल म्यूजिक फॉर एवरी मूड सेट टू ट्यून बाय माएस्ट्रो A.R. रहमान, मैं वापस आऊंगा इज अ रेयर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फॉर द एंटायर फैमिली. थ्रिल टू द सोल स्टीरिंग क्या कमाल है एंड इश्क Stana. Be enchanted by the celebratory vibes and classic charm of the romantic mascara and feel the nostalgia and emotions of falling in love with Vonahi. Witness a true movie experience to cherish. Be part of the simultaneous worldwide release of Main Wapas Aaunga, now showing and continuing exclusively at Caribbean Cinemas, South Park 10 in San Fernando, Cinema One Gemstone at 1 Woodbrook Place, Port of Spain, Cine Central at Price Plaza in Chaguanas and at Cinema City, Cineplex 3 in Debe. The wait is over. The India in Style Expo proudly presents their 2026 grand opening on Saturday, 27th June. Shop brand new arrivals in clothing, footwear, accessories, furniture, murtis, and so much more. Plus, enjoy delicious authentic Indian cuisine as the restaurant officially opens its doors. Visit them opposite the Center of Excellence in Macoya, open 10 a.m. to 8 p.m. daily. The India in Style Expo, your one-stop destination for all things Indian.

0: कुलेश वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गुरु महाराज की।
1: Let's all take our seats at this time. अपना आसन बैठिए।

कार्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन नौति अतः प्रणानेम सुशुद्धिरोऽस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः एवरीबॉडी से ओम श्री गणेश आय नमः हरि ओम प्रे थ्री प्लैनेट्स ग्रह सूर्य नारायण स्वामी एवरीबॉडी ब्रह्मा मुरारी श्रीपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो पुरष्ट गुरुष्ट

दिवाकरनमस्तुभ्यं प्रभाकरनमोऽस्तुते सप्ताशुरतमारोरं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं।

हरि ओम करे सातरे पिट हनुमान जी ओ मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम।

रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। विदाउट सत्संग देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। द ओनली वे दैट वी कैन अक्वायर दैट ऑफ भगवान इज सत्संग। एंड व्हाट हैपेंस in satsang?

0: बंसी बजावत गावत कान्हा।
1: भगवान श्री कृष्ण व्हेन ही प्लेज दैट फ्लूट